पहले ही दे दू वार्निंग, पार्टी चले गे टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के नाच ले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार